नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Sorin announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission or JPSC and the Jharkhand Staff Selection Commission or JSSC since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of National Testing Agency and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air gap systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all exam processes and submit a report on corrective action taken. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate, linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. Indian Army Chief General Dhiraj Seth has been conferred the rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel during an investiture ceremony at Sheetal Nivas in Kathmandu yesterday. Nepal Vice President Ram Sahai Prasad Yadav, Foreign Minister Shisir Khanal, India's Ambassador to Nepal Naveen Srivastav and high officials of Nepal Army and the Nepal government were present during the ceremony. General Seth reached Himalayan Nation on Sunday on an official visit at the invitation of his Nepalese Army counterpart General Ashok Raj Sigdel. The Indian Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Jharkhand today. The weather agency forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and West Uttar Pradesh today. In badminton, India's Ayush Shetty stunned world number one and defending champion Shi Yuqi of China in the first round of the men's singles at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. PV Sindhu and the women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand also advanced to the second round as Indian shuttlers made a winning start to their campaign. In men's cricket, India will look to press home their advantage against Sri Lanka on the fourth day of the first test in goal after taking a commanding lead of 178 runs at the end of day three. Indian bowlers bowled out the hosts for 284 in the first innings. Manav Sutar was the pick of the Indian bowlers, claiming four wickets while Ravindra Jadeja took three. For Sri Lanka, Sonal Dinushe scored his maiden test century while Niroshan Dikwela contributed 80 runs. Indian women's hockey team will face South Africa in their second Pool D match at the AFI.

सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, जो लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा मॉर्निंग शो सुहानी सुबह आकाशवाणी कोलकाता के 100.1 एफएम गोल्ड पर। सुबह का सौंदर्य अनूठा होता है, जो सूरज की पहली किरण, ठंडी हवा और पंछियों की चहचहाट के साथ जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आता है। सुबह की खूबसूरती के बारे में क्या कहूं, निर्मल नव में लाली छाई, प्यारी भोर की बेला आई, निद्रा तजकर पंछी जागे, कण कण में ज्योति समाई, अंधकार के पांव उखड़े, हौसले आसमान पर जकड़े, उठो धरा का अभिनंदन हो, नए सपने जीवन में गढ़ो।

और लॉय मेंडोंसा की आवाज में गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर ईशान लॉय। पहला गीत आपने सुना सूरज की बाहों में अभी ये जिंदगी, और अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज से। गीत के बोल हैं नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।

ऐसा है दोस्तों कि सुबह सुबह खुद को मोटिवेट करना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, और हम भी अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं सुहानी सुबह में, क्योंकि सुबह को अगर सुहानी बनानी हो तो बातें भी अच्छी होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, और उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी है। संत ज्ञानेश्वर से आपने इस गीत को सुना, कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास ने इसे बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने संगीतबद्ध किया। और अब रुख करते हैं अगले गीत की ओर। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से।

इंडिया वाले अपने पे आ जाए तो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। और ऐसा है इस गीत को आपने सुना नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन की आवाज में, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार विशाल एंड शेखर, फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर। और अब बता दूं आपको लोकल फोरकास्ट अगले 24 घंटे के लिए जो वैलिड है। आज तारीख है 18/8/2026। आसमान में बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 27.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से -4.7 डिग्री सेल्सियस कम है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य से -1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मैक्सिमम आर्द्रता की बात करूं तो 99% और मिनिमम आर्द्रता की बात करूं तो 96%। 17/8/2026 को 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 18/8/2026 को सुबह 6:30 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो बारिश हुई है इस बीच वो है 060.4 मिलीमीटर। 17/8/2026 को 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो बारिश हुई है वो है 059.6 मिलीमीटर। पश्चिम बंगाल के मछुआरों के लिए मौसम की चेतावनी 18/8/2026 को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और कभी कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 18/8/2026 को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के पास समुद्र में ना जाएं। और क्या, अब आगे बढ़ते हुए तोहफा, अरे तोहफा नहीं, मतलब ये गिफ्ट वाला तोहफा नहीं है, फिल्म का नाम है तोहफा। इस तोहफा फिल्म से अगला गाना लता मंगेशकर, किशोर कुमार और बेबी कविता की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार पप्पी लाहिरी।

शुरू की घड़ी में समय हो चला है 7:29 और फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है आपका अपना खरा सोना वाला चैनल यानी कि आकाशवाणी कोलकाता का 100.1 FM गोल्ड और कार्यक्रम सुन रहे हैं सुहानी सुबह आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और 18 अगस्त का दिन कई मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कई सारे महत्वपूर्ण घटनाएं। 18 अगस्त का दिन साहित्य विज्ञान और खेल जगत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। इस दिन जो है अगर मैं बात करूं साहित्य जगत के बारे में तो साहित्य जगत

में 18 अगस्त लोलिता उपन्यास का प्रकाशन 1958 में हुआ था। रूसी अमेरिकी लेखक व्लादिमीर नाबोकोव का बेहद चर्चित और विवादित उपन्यास लोलिता पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। जगत प्रसिद्ध हस्तियों के जन्म के बारे में कहूं जो भारत से जुड़े हैं, तो हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार और कवि गुलजार, उनका असली नाम जो है वो है संपूर्ण सिंह कालरा, और महान हाँ गुलजार का जन्म हुआ था आज ही के दिन 18 अगस्त 1934 को। और इसके अलावा महान भारतीय राजनेता व लेखिका विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त को हुआ था 1900 में। और जब बात छिड़ी गई है गुलजार से संबंधित, तो क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए, जो कि वैसे तो कई गाने उन्होंने कलमबद्ध किए हैं और सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन फिलहाल आपको मैं सुनवाना चाहूंगी फिल्म आंधी से वो गीत जिसके बोल है तुम आ गए हो नूर आ गया है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को आप तक मैं पहुंचा रही हूं आकाशवाणी कोलकाता के 100.1 FM गोल्ड के जरिए।

चलिए अब बात करते हैं खेल जगत की। तो खेल जगत में 18 अगस्त लू गेरिग का रिकॉर्ड 1931 बेसबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लू गेरिग ने न्यूयॉर्क यांकीज के लिए खेलते हुए अपना लगातार 1000वां मैच खेला था, जो खेल जगत में सहन शक्ति का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जीन साराजेन की जीत 18 अगस्त 1922। महज 20 साल की उम्र में गोल्फ के महान खिलाड़ी जीन ने पीजीए चैंपियनशिप जीती थी 18 अगस्त को। उसेन बोल्ट का ऐतिहासिक स्वर्ण, जी हां 18 अगस्त 2016, याद है ना, रियो ओलंपिक 2016 के दौरान इसी दिन उसेन बोल्ट ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार 3 ओलंपिक खेलों में इस स्पर्धा को जीतने वाले पहले धावक बनने का इतिहास रचा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से 18 अगस्त की तारीख उनकी कथित मृत्यु और विमान दुर्घटना के इतिहास से जुड़ी है। आधिकारिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइवान तत्कालीन जापानी शासित फार्मोसा के ताइहुकु हवाई अड्डे पर उनकी जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे वे गंभीर रूप से सुलझ गए और उसी दिन उनका निधन हो गया।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:37, 38 हो गया। समय का यही तो है, इंसान भले ठहर जाए पल दो पल, पर समय हमेशा चलते रहता है। और तभी तो कहते हैं चलने का नाम ही जिंदगी है। जो रुक गया वो पीछे रह गया, और हमें पीछे नहीं रहना है, हमें समय के साथ तालमेल मिलाते हुए आगे बढ़ते रहना है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आज है 18 अगस्त, और 18 अगस्त को हम एक विशेष दिन मनाते हैं। हाँ जी, ये सुनकर आपके अंदर भी जो है ना, वो जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट अप हो जाएगा। नेवर गिव अप डे मनाया जाता है 18 अगस्त को। हिंदी में अर्थ कभी हार ना मानना या कभी हार मत मानो होता है। इसी तरह वर्ल्ड नेवर गिव अप डे हर साल 18 अगस्त को मनाया जाता है, जो लोगों को जीवन में कभी भी हिम्मत ना हारने और संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा देता है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक प्रेरणादायक गाना सुनते हैं, सुनवाते हैं आपको, फिल्म इकबाल से, केके और सलीम मर्चेंट की आवाज में।

जैसा कि मैंने बताया कि आज वर्ल्ड नेवर गिव अप डे है, यानी कि हार मानने वाला जो हार नहीं मानने वाला दिन है, और हम किसी भी बात से हार नहीं मानने वाले हैं। हो सकता है कि हम अपने मंजिल तक सही समय पर ना पहुंच पाए हों, लेकिन कोशिश जारी रहेगा और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये भी एक बहुत ही बड़ा मतलब मोटिवेशनल लाइन है जो हमेशा मैं खुद को सुनाते रहती हूँ, कहते रहती हूँ मन ही मन। महान और प्रसिद्ध लोगों के प्रेरणादायक विचार हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सही दिशा भरते हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम और गौतम बुद्ध के कुछ चुनिंदा विचार जो है मैं भी आपसे साझा करना चाहूंगी। जैसे अगर बात करूं स्वामी विवेकानंद के विचार के बारे में, तो उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार भी जान लेते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। वहीं महात्मा गांधी के विचार भी साझा करूंगी। पहले वे आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। खुद में वो बदलाव लाएं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और अब अगला गीत, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, आरजू जगाऊं, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म यस बॉस से।

अब देखिए जब कोई भी कार्यक्रम सुनते हैं ना, मतलब किसी चैनल को आप ट्यून करते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ सुपर एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, और कुछ प्रोग्राम सुनते सुनते मतलब जो लेजी लैड होते हैं ना, वो भी थोड़े एक्टिव मोड में आने लगते हैं, और कुछ ऐसे लेजी लैड होते हैं, घनचक्कर होते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे लिए तो कोई गाना ही नहीं बजा, अगर हमारे लिए नहीं बजेगा तो हम उठेंगे कैसे। तो चलिए लेजी लैड लोग के लिए ये अगला गाना फिल्म घनचक्कर से, ऋचा शर्मा की आवाज में।

हाँ जी, समय हो गया है कि अब मैं आपसे विदा लूं। अब क्या है ना कि विदाई के समय थोड़ा थोड़ा तो दिल टूटता ही है, वैसे जाने का मन नहीं है आप प्यारे प्यारे श्रोताओं को छोड़कर, लेकिन क्या है ना कि हमें डिसिप्लिन का भी पालन करना है और जीवन का ये दस्तूर है, मिलन और जुदाई तो होते ही रहते हैं। और आऊंगी मिलने आपसे, 11:10 पर आऊंगी लेकर कार्यक्रम। लो आ गई उनकी याद, और याद से याद आया कि इस बीच अगर आपको मेरी याद आ जाए तो आप ट्यून कर सकते हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक वाला चैनल। 10:02 से लेके 11 तक हमारी और आपकी मुलाकात वहां भी हो सकती है। तो चलिए, अब क्या है कि आज के कार्यक्रम सुहानी सुबह में जो अंतिम गीत आपके लिए मैं प्ले करूंगी, उसे हमने लिया है फिल्म डियर जिंदगी से। जसलीन रॉयल की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को आप सुनेंगे। कौसर मुनीर ने इसे कलमबद्ध किया है और अमित त्रिवेदी ने संगीतबद्ध किया है। इसी के साथ यही कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और आज मंगलवार है तो क्यों ना कह दूं आपको, आपका दिन मंगलमय हो।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनावों में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल

0: रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियन

0: चैंपियनशिप की।
1: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल में भारत की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में यह जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश के राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी युकी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल। U.S. President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter U.S. election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. इंडियन आर्मी चीफ जनरल धीरज

0: अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम परियोजना पर इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। केरलम में विजिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को सदैव आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with the MLA Jai Ram Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students by offering them juice. Mahato thanked the government and said the decision addressed major demands with the JPSC JSS.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है।

0: और इसे अमरीका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने ये भी बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केरला में विंझिंजम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता ना करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी चीचू को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सिल्व और मौसिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेस की जोड़ी को 22-20, 21-14 से पराजित किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोनिल फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेट हता थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी की बात की जाए तो रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुथेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सरकार ने वर्ष 2014
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24 days students protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh, and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students by offering them juice. Mahato thanked the government and said the decision addressed major demands, with the JPSC JSSC Nyay Manch announcing that it was suspending its agitation for now. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Environment, Forest and Climate Change Ministry said the meeting will provide a platform to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. The BRICS Environment Ministers meeting will be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। केरलम में विजिंझम समुद्री बंदर का से आज से सीधा निर्यात और आयात हुआ शुरू और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग कर

0: सकता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी प्रदान किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केरलम में विजिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: विजिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विजिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन किया। इसमें 14 एशियाई देशों के 272 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 130 भारतीय हैं। श्री धामी ने कहा कि स्केटिंग ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करना उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी ने राज्य में आधुनिक और विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना की मजबूत नींव रखने में मदद की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में खेल विरासत योजना लागू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इस योजना के तहत 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21

0: 7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रीस के पर्यटक द्वीप सिफ्नोस में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रीक अधिकारियों ने बताया कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे पायलट और 2 यात्रियों की मौत हुई। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की पहचान और दुर्घटना की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जाम्बिया के राष्ट्रपति हाइकांडे हिचिलेमा दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हो गए हैं। राष्ट्रपति हिचिलेमा ने 51% से अधिक वोट प्राप्त कर चुनाव में सीधे जीत हासिल की। चुनाव आयोग के अनुसार हिचिलेमा को 29,65,326 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी विपक्षी नेता ब्रायन मुंडुबिले को 18,56,217 वोट मिले। अमेरिका के विशेष दूत जार्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। केरल में विजिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात हो गया है शुरू। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हरा दिया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the world news. The headlines. US President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter US election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. Direct exports and imports from Vizhinjam seaport in Kerala begins today. And Ayush Shetty stands world number 1 and defending champion Shi Yu Chi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. US President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter US election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. We have
3: in a social media post, Mr. Trump referred to a recent conversation with India's Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. He said Mr. Kumar had questioned how elections could be held in the United States without a mandatory valid photo identity document. Mr. Trump used the remarks to reiterate his demand that the U.S. Congress pass the Safeguard American Voter Eligibility, that is Save America Act. The proposed legislation seeks to introduce stricter requirements for voting in federal elections. It would require voters to provide documentary proof of U.S. citizenship as as well as valid government-issued photo identification while registering for federal elections. The White House has described the legislation as a measure to ensure

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत के निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग

0: चार घंटे तक चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुश्नर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण, असैनीकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार से मुकाबला करेंगी। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India is hosting the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi, which started a short while ago. Environment, Forest and Climate Change Ministry said the meeting will provide a platform to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. The BRICS Environment Ministers meeting is presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. The event is being held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. In Jammu and Kashmir, the security forces today launched search operations at several locations in Udhampur, Riyasi and Kathua districts following reports of the movement of suspected individuals. Additionally, security forces conducted search operations in the Sadini forests in Riyasi and in several villages near the international border in the Hiranagar sector of Kathua. These operations are ongoing in all areas and more details are awaited. Meanwhile, General Officer Commanding in Chief of Northern Command, Lieutenant General Pratik Sharma, visited the forward areas along the line of control in Poonch district yesterday. During the visit, he stressed the need for continued vigilance and innovative approaches to effectively address emerging security challenges. Jharkhand government has cancelled the JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into the recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited the Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato

0: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 11:10 और 57 सेकेंड, और फिलहाल आप और हम जुड़े हैं खरा सोना वाले चैनल पर, यानी कि 100.1 FM गोल्ड पर। लेकर हाजिर है आपकी अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम लो आ गई उनकी याद, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है। और आज आपको बता दूं कि 100.1 FM गोल्ड पर म्यूजिकल तरीके से गुलजार साहब का जन्मदिन मनाएंगे, और साथ साथ उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं 100.1 FM गोल्ड की पूरी टीम की तरफ से। पहला गीत फिल्म आंधी से कोकिल कंठी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार गुलजार, संगीतकार आर डी बर्मन, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 11:14:35 और अब आगे बातचीत होगी। हाँ, बहुत सारी बातें होंगी गुलजार पर। ऐसा है कि हिंदी फिल्मों में अपने गीतों से इश्क का गुलशन महकाने वाले गुलजार साहब का आज जन्मदिन है। गुलजार, वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा, जन्म 18 अगस्त 1936, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार होने के साथ ही एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार भी हैं। इनकी रचनाएं मुख्यतः हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में हैं। गुलजार को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर में उनके द्वारा लिखा गया गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी गीत के लिए गुलजार को ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2013 के लिए गुलजार को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए भी चुना गया था।

पश्चिमी पंजाब के झेलम जिले जो अब पाकिस्तान में है के दीना गांव में 18 अगस्त 1936 को जन्मे संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार ने ना सिर्फ एक गीतकार के रूप में बल्कि लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में भी बॉलीवुड में अपना विशेष योगदान दिया है। बचपन के दिनों से ही शेर और शायरी का शौक रखने वाले गुलजार अंताक्षरी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते थे। उन्हें गीत संगीत के प्रति खास, मतलब एक खास तरह की रुचि थी। उन्हें वो रविशंकर और अली अकबर खां के कार्यक्रम सुनने के लिए जाया करते थे। 1947 में हिंदुस्तान विभाजन के बाद जो है उनका परिवार जो है अमृतसर चला गया, चलाया, और इसके बाद अपने सपनों को नया रूप देने के लिए गुलजार मुंबई आ गए। लेकिन सपनों की नगरी में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने मोटर गैरेज में भी एक मैकेनिक की नौकरी की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाती हूं बेहद खूबसूरत गीत। वैसे बता दूं कि अभी जो गीत आपने सुना था, जय हो, सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और

विजय प्रकाश की आवाज में स्लम डॉग मिलीनियर से इसे बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया था गुलजार ने, और ए आर रहमान का संगीत था। और अगला गाना जिसे मैं आपके लिए प्ले करूंगी और आप सुनेंगे अपने खरा सोना वाले चैनल पर, यानी कि आकाशवाणी कोलकाता के 100.1 एफएम गोल्ड पर, वो हमने लिया है फिल्म दिल से। फिल्म से अजी दिल से गाना सुना भी रही हूँ, दिल से आप गाना सुनिएगा भी, और फिल्म का नाम भी है दिल से। सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में इस गीत को सुनिएगा, गीतकार गुलजार और संगीतकार ए आर रहमान।

गुलजार साहब के आरंभिक जीवन की बात करूं तो मुंबई आने के बाद कवि के रूप में गुलजार PWA से जुड़े। उन्होंने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1961 यानी कि इन द ईयर 1961 में बॉलीवुड के महान निर्देशक बिमल रॉय के सहायक के रूप में की। गुलजार ने ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर भी काम किया। बिमल रॉय ने अपने इस सहायक निर्देशक के भीतर एक ऐसे कवि को देखा जो रूहानी और रोमानी शब्दों से इस तरह खेलता था जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं। उन्होंने गुलजार को सहायक निर्देशक के रूप में काम देते हुए अपनी क्लासिक फिल्म बंदिनी के लिए गीत लिखने का काम दिया। गीतकार के रूप में गुलजार ने पहला गाना मेरा गोरा अंग ले ले वर्ष 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी के लिए लिखा। जब तक बंदिनी प्रदर्शित हुई यानी कि रिलीज हुई, उससे पहले बलराज साहनी की फिल्म काबुलीवाला का प्रदर्शन हो गया। इस फिल्म के गीतों को भी गुलजार ने ही लिखा था। काबुलीवाला में उनका लिखा हुआ गाना ए मेरे वतन के लोग, ए मेरे बिछड़े वचमन, तुझ पे दिल कुर्बान और गंगा आए कहां से गंगा जाए कहां ने उन्हें ना सिर्फ श्रोताओं के दर्शकों की नजर में उभार दिया बल्कि बंदनी के गीतकार के रूप में दर्शकों ने जब उनका नाम सुना तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई और गुलजार श्रोताओं की उम्मीदों पर ना सिर्फ खरे उतरे बल्कि उन्होंने अपने लिए बॉलीवुड में नाम और शोहरत भी पाई। अब इस बात पे भला मैं ये गाना कैसे ना सुनाऊं आपको, कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बंदनी से, संगीतकार SD बर्मन और गीतकार गुलजार।

क्या है ना, गाना सुनते सुनते मैं भी गाने को सुनते सुनते खो गई थी, उस गाने को याद कर रही थी, उस फिल्म के वो दृश्य याद आ रहे थे मुझे। अब ऐसा है कि जब बात हो रही है गुलजार की, तो उनके फिल्म निर्देशन से भी जुड़ी बातें आपसे साझा करूं। काबलीवाला के बाद गुलजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखकर जन जन के हृदय में तार झनझनाए और उन्हें भाव विभोर फिल्में गीत गंगा को समृद्ध किया। गुलजार ने वर्ष 1971 में फिल्म मेरे अपने के जरिए निर्देशन यानी कि फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में भी कदम रखा। अपने समय की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से विख्यात मीना कुमारी के साथ उन्होंने विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म में पेश किया था। मेरे अपने फिल्म मीना कुमारी के दमदार अभिनय और गुलजार के डायरेक्शन क्षमता की वजह से सफलता पाने में कामयाब हुई। गुलजार ने अपनी फिल्मों में अनगिनत जो है अभिनेत्रियों को बेहतरीन किरदारों में पेश किया। उन्होंने सुचित्रा सेन के साथ फिल्म आंधी, रेखा के साथ फिल्म इजाजत, हेमा मालिनी के साथ फिल्म खुशबू, किनारा में शबाना आजमी के साथ, देवता शर्मिला टैगोर के साथ भी उन्होंने काम किया। फिल्म मौसम में नमकीन जैसी अविस्मरणीय फिल्में बनाई। संजीव कुमार गुलजार के पसंदीदा कलाकार थे। संजीव कुमार को लेकर उन्होंने मौसम, कोशिश, आंधी, नमकीन, अंगूर, देवता जैसी अविस्मरणीय फिल्में दी हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अन्य नायकों के साथ काम नहीं किया, उन्होंने अपनी शुरुआत विनोद खन्ना से की थी। उनके साथ उन्होंने समय समय पर कुछ चुनिंदा फिल्में, अचानक, लेकिन और मीरा जैसी भी फिल्में बनाई। और फिलहाल आप सभी को अगला गीत मैं सुनवाना चाहूंगी फिल्म इजाजत से। अगर आपकी इजाजत हो तो, क्या कहा आपने, आपकी इजाजत है तो चलिए, हमें क्या दिक्कत है फिर गाना सुनाने में। आशा भोसले की आवाज में इस गीत को सुनते हैं जिसे कलमबद्ध किया।

चलिए आगे बढ़ते हुए बात करना चाहूंगी गुलजार साहब के विवाह से संबंधित। 1973 में गुलजार का संयोग जो है, संयोग कहिए संजोग कहिए, कुछ ऐसा बना कि उन्होंने फिल्म अभिनेत्री राखी से शादी कर ली। राखी और गुलजार की शादी में गुलजार ने सिर्फ एक शर्त रखी कि राखी शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। राखी ने गुलजार का कहा माना और काम बंद कर दिया। इसके बावजूद इन दोनों की कभी नहीं बनी और 3 साल बाद राखी अपने बेटे मेघना को लेकर गुलजार से अलग हो गई और उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। गुलजार से शादी के पूर्व यानी कि पहले 15 वर्ष पूर्व की उम्र, मतलब जब वो 15 साल की थी, तो उनकी शादी अजय विश्वास से हो गई थी। वे मुंबई के फिल्मालय में काम करते थे। सास ने राखी को पति के पास रहने के लिए मुंबई भिजवा दिया। राखी को अजय का साथ जरा भी नहीं जमा। एक दिन अजय ने राखी को घर से निकाल दिया। राखी को आज भी इस बात का गम है कि गुलजार ने कभी उनकी अभिनय क्षमता को पहचानने की कोशिश नहीं की। गुलजार से राखी को एक बेटी मेघना है। आज वो बॉलीवुड में मेघना बतौर निर्देशक और लेखक के रूप में अपनी पहचान रखती है। और फिलहाल अगला गाना फिल्म मौसम से भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में, दिल ढूंढता है।

बेनज़ीर के सेट पर हुई थी। विमल राय निर्देशक थे और गुलजार सहायक थे। शॉट रेडी होने पर स्टार को कैमरे तक लाने की जिम्मेदारी उनकी थी। यहीं से दोस्ती में अपनापन पनपता चला गया। बाद में गुलजार जब स्वतंत्र फिल्म निर्देशक बने तो फिल्म मेरे अपने की मुख्य भूमिका गुलजार ने मीना को सौंपी। 1972 में मीना चल बसी। मेरे अपने कुछ समय बाद प्रदर्शित हुई और गुलजार स्वतंत्र फिल्म निर्देशक बन गए। आज भी गुलजार के ऑफिस के दीवार पर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का चित्र बोलता सा नजर आता है। संजीव कुमार और पंचम दा थे गुलजार के दोस्त। फिल्म मेरे अपने रिलीज हुई थी 1971 में। गुलजार ने बतौर फिल्म निर्माता भी अपने दिल की बातें पर्दे पर उतारी। 1972 में उन्होंने एक और भावपूर्ण फिल्म बनाई, कोशिश। इस फिल्म में संजीव कुमार और जया भादुरी ने गूंगे बहरे का अभिनय कर दर्शकों की आंखें नम कर दी थी। गुलजार की कलम सीधे दिल पर दस्तक करती है। उस पर संजीव कुमार से मिलकर जैसे गुलजार की लेखनी को और शिरफत हासिल हो गई। फिर दोनों लेखक और अदाकार से इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। इसी जोड़ी ने 1975 में आंधी और मौसम के अलावा 1981-82 में क्रमशः अंगूर और नमकीन बनाई। 1987 में आई इजाजत भी उनके निर्देशन में बनी और गुलजार द्वारा लिखित कई पुस्तक भी हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं और ज्यादा कुछ कहूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी 1962 में चौरस रात लघु कथाएं इनकी प्रकाशित हुई। 1963 में कविता संग्रह जानम प्रकाशित हुई। 1972 में कविताएं एक बूंद चांद ये प्रकाशित हुई। 1997 में कथा संग्रह रावी पार ये प्रकाशित हुई। 2002 में रात चांद और मैं। 2003 में रात पश्मीने की खराशें ये प्रकाशित हुई। और अब चलते चलते आप सभी के लिए एक बेहद खूबसूरत गीत जिसे संगीतबद्ध किया है भूपेन हजारिका ने, गीतबद्ध किया है, गीत को लिखा है बड़ी खूबसूरती से गुलजार ने और आवाज़ है कुकुलकंठी लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम लेकिन। इस गीत से ये गाना यारा सिली सिली सुनते सुनते आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को। फिर किसी रोज किसी और विषय पर कार्यक्रम जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए और आपका दिन मंगलमय हो।

मीना कुमारी और गुलजार के रिश्ते भावनाओं से परे हुए रहे थे, और मैंने इनकी भावनाएं जो है ना, उनकी क्या बताएं, इनके रिश्ते में ऐसे गहरे भावनाएं थे कि मीना ने मौत से पहले अपनी तमाम डायरी और शायरी की कॉपियां गुलजार को सौंप दी। गुलजार ने उन्हें संपादित कर बाद में प्रकाशित भी करवाया था। मीना गुलजार की भेंट फिल्म

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र

0: और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, is presiding over the meeting. The theme of India's BRICS Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The Jharkhand government has cancelled the JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. However, the demand of protesters for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government announced a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at several locations in Karnataka linked to alleged Karnataka Public Service Commission KPSC paper leak scam. Former chairman of KPSC Shiv Shankarappa Esahukar is accused of examination paper leaks, tampering with OMR sheets and demanding bribes ranging from 70 to 80 lakhs per candidate to recruit government veterinary officers. It is also alleged that a private company acted as a middleman. In this background, ED conducted searches at the residence of Shiv Shankarappa and a few former members of KPSC and officers linked to a private company. The investigation is related to irregularities and possible involvement of people connected with the corrupt recruitment process. In Jammu and Kashmir, security forces today launched search operations at several locations in Udhampur, Riyasi and Kathua districts following reports of the movement of suspected individuals. Additionally, security forces conducted search operations in the Sadini forests in Riyasi and in several villages near the international border in the Hiranagar sector of Kathua. These operations are ongoing in all areas and more details are awaited. Meanwhile, General Officer Commanding-in-Chief of Northern Command, Lieutenant General Pratik Sharma, visited forward areas along the line of control in Poonch district yesterday. During the visit, he stressed the need for continued vigilance and innovative approaches to effectively address emerging security challenges.

0: স্তোয়েভার বিরুদ্ধে খেলবেন। নেদারল্যান্ডসের আমস্টেলভিনে আজ মহিলাদের FIH হকি বিশ্বকাপ 2026 পুল ডিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে ভারতীয় মহিলা হকি দল। অলিম্পিক রূপজয়ী চীনের সঙ্গে 2-2 গোলে ড্র করে ভারত তাদের অভিযান শুরু করে। বর্তমানে পুল ডিতে শীর্ষে রয়েছে ইংল্যান্ড, সমান পয়েন্ট নিয়ে ভারত ও চীন যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। চারটি পুলের প্রতিটির শীর্ষ দুটি দল টুর্নামেন্টের পরবর্তী ধাপে খেলবে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। তারাপীঠের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন করল জেলা পুলিশ। গ্রেফতার হোটেল মালিকের ছেলে কল্যাণ আশিস পাল। জাতিগত শংসাপত্র যাচাইয়ের বিজ্ঞপ্তির ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। চলতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার 3 দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতের সভাপতিত্বে নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে দ্বাদশ ব্রিক্স পরিবেশ মন্ত্রীদের বৈঠকের সূচনা। কর্ণাটক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় ইডি কর্ণাটকের বেশ কয়েকটি স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে। খবর শেষ হলো, এর পরের খবর শুনুন বেলা 1:30।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে জাগৃতি শর্মা। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने तथा पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों हेतु सार्थक तरीके से जुड़ने को उत्सुक हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
2: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, OMR शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया?

0: कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो जनगणमन हो इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
2: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जैसे डीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
3: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में

0: ने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माहे में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइयाह अरुमनैयागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमार की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़,

ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: साथ में जागृति शर्मा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पर्यावरण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। इसी मामले में निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइयाह अरुमेनैयागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, मुक्केबाजी कोच छोटेलाल यादव और निशानेबाजी कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में म्यांमार की थेथ हतार थुजार को सीधे सेट में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नेत्र निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और सहयोग मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता

0: देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को बहुत महत्व देता है। श्री यादव ने ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों के साथ ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए 4 ज्ञान संकलनों का अनावरण किया। इन दस्तावेजों में सदस्य देशों की बेहतरीन कार्यप्रणालियों, ज्ञान और नवाचारों को शामिल किया गया है। ये संकलन ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह में हुए विचार विमर्श का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा नहीं करना चाहिए।
1: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सहप्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का ये अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। इसे देश के सबसे चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले ट्रेकिंग मार्गों में से एक माना जाता है। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। केरलम में विजयंगम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विजयंगम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जहाज में 2 कंटेनर भेजे गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विजयनगरम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 14 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The 12th BRICS Environment Ministers meeting concluded successfully today at Bharat Mandapam in New Delhi under India's BRICS chairship in 2026. The two-day meeting aimed to foster consensus and strengthen environmental cooperation among the BRICS nations. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav presided over the meeting. Addressing the gathering, Mr. Yadav said that as chair,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को बहुत महत्व देता है। श्री यादव ने ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए 4 ज्ञान संकल्पों का अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी के

0: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए 4 नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही फैसला है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा नहीं करना चाहिए। केरलम में विजयंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया, जो क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने यूरोप के लिए पहले जहाज और 2 कंटेनर के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अनुपस्थिति, स्थायी रूप से स्थानांतरण, 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकरण और मृत्यु जैसे कारणों से 2,07,03,268 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अधूरे रह गए। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 40 रन बना लिए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थे थतार थुजार को हराया। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। भारत की प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 खिलाड़ियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमुज तबा। The 12th BRICS Environment Ministers meeting concluded successfully today at Bharat Mandapam in New Delhi under India's 2026 BRICS chairship. The two-day meeting aimed to foster consensus and strengthen environmental cooperation among BRICS nations. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, presided over the meeting. Addressing the gathering, Mr. Yadav said that as chair, India remains committed to fostering open, constructive and consensus-based dialogue and greatly values the perspectives and contributions of all member countries.
3: As nations pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries where environmental vulnerability is often closely

जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तन्हाइयों का दर्द मिटा देती है और ये चाय हर गम को भुला देती है। जब घुलती है इसमें क्लासिक्स गानों की मिठास तो ये शाम को और भी हसीन बना देती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।

0: मैं हूं रिंकू, जो आपके लिए लेकर आई हूं गोल्ड पर, यानी कि एफएम गोल्ड पर 100.1 में चाय और क्लासिक्स का शो।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर, एफएम गोल्ड पर।
0: दोस्तों बातें तो बहुत करेंगे हम अभी, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक गीत, क्योंकि जिसका आपको इंतजार है। मैं बिल्कुल देरी नहीं करूंगी, सुना देती हूं आपको आशा भोसले की आवाज में। सुनिए और मेरे संग बातें भी लगे रहिए।
2: झुमका गिरा रे, हाय

0: এখন ভারতের গ্রামে গ্রামে ছাদের চেহারা বদলে গেছে। আগে যেখানে ছাদে পাপড় আর কাপড় শুকোতে দেখা যেত, এখন সেখানে বিদ্যুতের বিল জিরো হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে সোলার প্যানেল লাগানো চলছে, আপনিও লাগিয়ে নিন। 78,000 টাকা সাবসিডি দিচ্ছে ভারত সরকার, 30,00,000 বেশি পরিবার তো এর সুবিধা নিচ্ছে। পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনার সঙ্গে যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsurjaghar.gov.in।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।
2: जी हाँ दोस्तों, FM गोल्ड पर सुनते सुनते गीतों पे आज बज गए हैं 5:21 और शाम तो हो ही चुका है, सूरज ढल चुके हैं, लेकिन उनकी हल्की सी लाली, खिड़की से आती ठंडी हवा और आपके हाथ में बिल्कुल होगी गरम गर्मा गर्म चाय का प्याला। तो जब एक साथ ये तीनों मिलते हैं ना, तो दिल में बस एक ही बात कहती है कि वह जिंदगी हो तो फिर ऐसी ही। जी हाँ दोस्तों, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये तो एक एहसास है जो आप इस एहसास के साथ मेरे साथ बांटने के लिए रेडी हो गए हैं। दोस्तों मैं भी आपके साथ इसी तरह से गीतों की माला लेकर आपके सामने FM गोल्ड में शुरू हो गई हूं कि एक से एक बेहतरीन गीतों को बजाऊं और आपका मन बहलाऊं। तो दोस्तों चलिए, बातों से तो पेट नहीं भरेगा, गीत भी सुनाना पड़ेगा। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म आन मिलो सजना से।

जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज और साथ में गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, और उनको सजा रहे थे संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी। तो दोस्तों ऐसी गीत तो बनकर तैयार होनी ही थी। वैसे क्या बात है, इस गाने को सुनकर दिल जैसा ठहर जाता है। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम कितना कुछ पीछे छोड़ आते हैं ना, लेकिन ये पुराने गाने और इलायची वाली चाय, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखती है। तो दोस्तों जो आजकल काफी जरूरत है, लोग काफी डेट्स पर जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो सुकून नुक्कड़ की दुकान पर कुल्लड़ वाली चाय पीने में और बैकग्राउंड में बजते पुराने गानों को सुनने में जो मजा आता है वो फाइव स्टार कैफे में कहां आता है। तो चलिए अपने मजे को हम बेकरार रखते हैं और सुनते हैं उस चट पगले को मोहम्मद रफी की आवाज में।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड।

0: जी हाँ दोस्तों, वैसे तो गीतों की भरमार लगी है लेकिन किशोर कुमार की बात ही अलग है। और वैसे 5:39 हो चुके हैं और आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं आरजे रिंकू के साथ FM गोल्ड पर 100.1 खरा सोना। तो आइए हम गीतों को यूं ही बरकरार रखते हैं, लेकिन इससे पहले सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: जी हाँ दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आइए अब हम बात करते हैं भारत सरकार की नई योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय में। भारत सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस समय देश के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना सीधे तौर पर देश के अन्नदाताओं यानी कि किसानों को आर्थिक मजबूती देने का काम करती आई है। आइए हम इस योजना के बारे में विस्तार से मगर आसान शब्दों में समझते हैं कि यह भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को खेतीबाड़ी की जरूरतें पूरी करने के लिए सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सालाना योजना के तहत मिलने वाले कुछ लाभ है, जो सालाना 6,000 की मदद योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल कुल 6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। 3 समान किस्तें होती हैं। ये राशि एक साथ ना देकर 2,000-2,000 की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने पर दी जाती है। ये राशि किसी बिचौलिए के बिना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के माध्यम से सीधे किसान के आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब जानते हैं योजना के लिए कौन से पात्र हैं। देश के सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता इस योजना के पात्र बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई किसान इस योजना में नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए। आधार कार्ड, भूमि के कागजात जैसे कि खसरा, खतौनी या फिर जमाबंदी, बैंक खाता पासबुक जो कि आधार से लिंक होना चाहिए और उसका खुद का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होना चाहिए। किसान भाई इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन विकल्प के जरिए खुद आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC या वसुधा केंद्र पर जाकर भी फॉर्म भरवाया जा सकता है। और इसी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक किसान परिवार इस योजना के माध्यम से सीधे अन्नदाताओं को इस आर्थिक मजबूरी और आर्थिक मजबूती देने में सक्षम है।
1: हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स।
1: चाय और क्लासिक्स
2: 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स।
1: चाय और क्लासिक्स
2: 100.1 FM गोल्ड पर। FM

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म खेल खेल में से गुलशन बाबरा का गाना था, लिखा हुआ और संगीत था आरडी बर्मन ने। वैसे दोस्तों समा रोशन है महफिल में, सारंगी की तान बसती है और हम हैं उस दौर में जहां संगीत की जान बसती है, यानी कि एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना पे रिंकू आपको सुना रही है एक से एक गीत। और अब मुझे पता है चाय के साथ आपको ये गीत बड़े सुहाने लग रहे हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर। एफएम गोल्ड पर।

जी हाँ दोस्तों, यादों के पन्ने जब हम पलटते हैं तो कल के इसी मोड़ में, इन सुरों की महफिल में, लोग अपने आप से वादा भी करते हैं कि हम इन गीतों में खो जाएंगे। वैसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में इतना जोर था कि लोग उनके आगे नतमस्तक हो ही जाते थे। वैसे जीवन मृत्यु फिल्म से आप सुन रहे थे और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने। लता जी और मोहम्मद रफी साहब दोनों ही यादों के इस झरोके से जब अपनी मुस्कान सुरों की महफिल सजाने बैठते हैं तो लोग यूं ही नहीं खामोश हो जाते। आइए सुनते हैं एक और गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज में।

0: हवा
1: आहा तुम जा
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
4: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
3: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देश भर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने विजयनगरम से यूरोप के लिए पहले जहाज को 2 कंटेनरों के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराया। महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, वहीं मिक्स डबल्स में आशीष सूर्या और अमृता प्रमुदेश तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has called for people-centric and implementation-oriented environmental action at the 12th BRICS Environment Ministers meeting held at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day meeting held under India's 2026 BRICS chairship concluded successfully today with a focus on building consensus and strengthening environmental cooperation among member countries. Speaking on the occasion, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, who presided over the meeting, highlighted the growing global environmental challenges and called for stronger BRICS cooperation.
1: As nations pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss, and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk, are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries, where environmental vulnerability is often closely intertwined with broader development priorities, including poverty eradication, food security, and inclusive growth.
0: The Supreme Court today said it would constitute a high-powered committee comprising retired Apex Court and High Court judges, a former DGP and an ex-CBI director to examine allegations of police excesses against students during recent protests in Delhi and violence against police personnel. The court said an order for constituting the committee would be released tomorrow after it receives suggestions from different parties on other members to be included in the panel. The court said that the committee will also look into allegations concerning sexual assault and online harassment of female protesters and victimization of other vulnerable persons through social media. Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council of Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has achieved a major milestone in its nationwide mission mode drive for mandatory biometric updates, completing more than 2 crore biometric updates for school children across the country. The special drive, initiated in September last year, has now covered over 1,56,000 schools, enabling school children to complete their Aadhaar biometric. In Jharkhand, police have arrested 4 extremists, including Ramdev Lohra, a sub-zonal commander of the banned Jharkhand Janmukti Parishad, JJMP, in Gumla district. Police said he was carrying a bounty of 5 lakh rupees. A huge cache of arms and ammunition was also recovered from them. Pakistan's Supreme Court today ordered authorities to transfer jailed former Prime Minister Imran Khan to Islamabad's Shifa International Hospital for a comprehensive medical exam within the next few days. It also directed authorities to ensure weekly meetings between Imran Khan and his family members and ordered the establishment of a medical board with his personal physician and his sister to be associated with it. Iran today said that the Strait of Hormuz will remain closed to maritime traffic until all Iranian conditions under the 14-point Memorandum of Understanding signed with the US are fully met. Tehran has tied the reopening of the strategic waterway directly to the complete removal of foreign sanctions and the cessation of military operations. The remarks come amid the expiry of the 60-day window provided by the MOU to halt military hostilities for peace talks between the two sides. The government has announced the National Sports Awards 2025. India's premier women's badminton doubles pair, Trisha Jolly and Pulela Gopichand, along with 15 other sports persons from various disciplines, will be presented the Arjun Award for their outstanding performances in sports and games. And in men's cricket, chasing a target of 372 runs, host Sri Lanka were 84 for 4 in the second innings against India on the fourth day of the first test in Galle when reports last came in. Earlier, India were bowled out for 193 in their second innings, setting the visitors a target of 372 runs. Rishabh Pant top scored with 66 runs off 69 deliveries. And that is the end of this news bulletin.
5: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, देश ने हाल ही में अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और नई तकनीक की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने और देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की घोषणा की। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इन तीनों पहलों के जरिए भारत किस तरह अपने युवाओं को नई तकनीकी क्षमताओं से लैस करने, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, आज की अर्थव्यवस्था में तकनीक तेजी से रोजगार, शिक्षा और उद्योग की दिशा तय कर रही है। ऐसे समय में युवाओं को नई तकनीकों का ज्ञान देना केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का भी माध्यम है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल में प्रशिक्षण देने की घोषणा की। आइए रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि ये पहल भारत के युवाओं के लिए किस तरह नए अवसर सृजित कर सकती है।
7: श्रोताओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, परिवहन और वित्त जैसे अनेक क्षेत्रों में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में एआई से जुड़ी कुशल मानव शक्ति की मांग भी

0: बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि एआई का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और भारत के युवाओं को इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने घोषणा की कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
1: एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केवल तकनीक का उपभोक्ता बनाने के बजाय एआई के क्षेत्र में नई संभावनाओं के साथ जोड़ना है। इससे युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत में पहले से ही नई पीढ़ी को तकनीक और नवाचार से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप और युवा नवाचार का भी उल्लेख किया। आज देश में करीब 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय युवा तकनीक आधारित उद्यम और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एआई कौशल प्रशिक्षण इस क्षमता को और मजबूत कर सकता है। इसका लक्ष्य केवल नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं की एक बड़ी पीढ़ी तैयार करना है जो एआई आधारित अर्थव्यवस्था में नेतृत्व कर सके।
2: श्रोताओं, तकनीकी कौशल के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक समान पहुंच भी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए महंगी कोचिंग एक बड़ी चुनौती बन रही है। अब रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि सरकार की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की पहल किस तरह इस चुनौती को कम करने का प्रयास है।
3: श्रोताओं, देश में बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन महंगी कोचिंग कक्षाओं का खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर कोचिंग का आर्थिक बोझ कम करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क तैयार करने की घोषणा की। ये घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर कोचिंग क्लासेस का आर्थिक बोझ न आए, इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग का फैसला लिया है। इस दिशा में हम एक मजबूत नेटवर्क भी खड़ा करने वाले हैं।
1: हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
3: डिजिटल माध्यम के जरिए शिक्षा को व्यापक स्तर तक उपलब्ध कराने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अवसरों की समानता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस पहल का उद्देश्य केवल मुफ्त सामग्री उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शिक्षकों, तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जोड़कर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जिससे देश के अधिक से अधिक युवा लाभ उठा सकें।
2: श्रोताओं, युवा शक्ति और डिजिटल कौशल के साथ भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा भी जरूरी है। डिजिटल दुनिया में जिस तकनीक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें सेमीकंडक्टर प्रमुख है। अब रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में किस तरह अपनी क्षमता बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों के लिए क्या लक्ष्य रखा है।
4: श्रोताओं, आज लगभग हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन से लेकर मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और परिवहन व्यवस्था तक चिप आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में बताया कि 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र शुरू हो चुके हैं और इनमें हो रहा उत्पादन निर्यात भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले 7-8

0: वर्ष में और 5-7 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देती है।
1: भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका है और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5-7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते।
0: सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता बढ़ने से भारत को चिप की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, मेडिकल टेक्नोलॉजी और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों के लिए घरेलू आपूर्ति को भी बल मिल सकता है। सेमीकंडक्टर उद्योग केवल एक विनिर्माण क्षेत्र नहीं है, इससे अनुसंधान, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कौशल विकास और उच्च तकनीक वाले रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
2: श्रोताओं, AI कौशल, डिजिटल शिक्षा और सेमीकंडक्टर निर्माण, ये तीनों पहल अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी दिखाई देती है, लेकिन इनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। AI के लिए कुशल युवा चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा चाहिए और नई तकनीक के लिए मजबूत डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता जरूरी है। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश भारत की नई तकनीकी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत कर सकता है। 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल से जोड़ना भारत की मानव पूंजी को नई दिशा देने का प्रयास है। मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शिक्षा के अवसरों को अधिक व्यापक बनाने की पहल है। वहीं सेमीकंडक्टर संयंत्रों का विस्तार, तकनीकी आत्मनिर्भरता और उच्च तकनीक वाले विनिर्माण को मजबूत करने की दिशा में कदम है। युवा शक्ति, तकनीकी कौशल और आत्मनिर्भर तकनीकी आधार, इन तीनों का मेल भारत को नई पीढ़ी की अर्थव्यवस्था में मजबूत भूमिका निभाने में मदद कर सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। नमस्कार।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

जी हाँ दोस्तों, इश्क की गली और इश्क की लगी जब दिल को बेकरार करती है तो ये भीगी आंखें सिर्फ उनका इंतजार ही करती है। वैसे शोर चाहे इस जमाने में आज कितना भी हो, पुराने गीतों की धुन आज भी हमारे दिल में उसी तरह ही उतरती है जिस तरह मोहम्मद रफी की आवाज हमारे कानों से छू कर दिल में उतरी है। वैसे गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म खिलौना। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 6:25 हो चुके हैं और जाने का समय तो आ ही चुका है। तो आज रिंकू आपसे अलविदा कहती है, लेकिन सुना देती हूँ आपको मुकेश की आवाज में ये गीत और सुनकर मुझे इजाजत दीजिए। फिल्म धर्म गरम से मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आर डी बर्मन का म्यूजिक, सुनते रहिए फिल्म धर्म गरम।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,200। रीजनल रूरल बैंक्स रजिस्टर ओवर 10% राइज इन ग्रॉस लोन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स में लगभग 500 अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,200 अंक से नीचे पहुंचा। और ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में पिछले एक साल के दौरान 10% से अधिक की वृद्धि और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। और तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम सुषमा।
2: थैंक यू राजेश, थैंक यू निखिल।
0: बिफोर वी प्रोसीड, हियर इज अ डिस्क्लेमर।

0: Views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन सुस्ती आई, जबकि निफ्टी छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक आज 0.4% नीचे आए, जबकि स्मॉल कैप में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। इससे पहले आज सुबह कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से बाजार लाल निशान के साथ खुले थे।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड इन द नेगेटिव टेरिटरी टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 493 पॉइंट्स और 0.63% टू क्लोज एट 77,235. The Nifty slipped 133 points or 0.55% to settle at 24,155. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.4%, while the small-cap 100 index remained unchanged. The Sensex extended its losing streak for the third consecutive session, while the Nifty closed lower for the sixth straight day. While the markets opened lower amid weak global cues, both indices remained under pressure and traded in a range-bound manner through most of the session. However, towards the fag end of the session, the markets extended their decline amid selling pressure ahead of the weekly expiry of Nifty futures and options contracts.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ। सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 2.4%, इन्फोसिस 2% और एचसीएल टेक 1.9% शामिल थे। वहीं इसके उलट एक्सिस बैंक में 0.9%, पावर ग्रिड में 0.7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बीएसई 21 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस। Among the top laggards, focused IT declined 1.8%, information technology dropped 1.7%, and realty lost 1.3%. In contrast, mid-small private banks quality tilt advanced 0.3%, hospitals as well as healthcare increased by 0.25%, and auto added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 1,930 advanced and 216 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा, एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है।
2: थैंक यू
1: सुषमा। आज अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो दोनों सूचकांक दबाव में रहते हुए ज्यादातर समय तक एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के आखिरी सत्र में निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी से पहले बिकवाली के दबाव के कारण बाजार में गिरावट देखी गई। और साथ में अगर हम पिछले 2 हफ्ते की बाजार की चाल देखें और अब तक के 2 दिन के इस हफ्ते का कारोबार देखें तो गिरावट का जो रुख है वो क्या कहानी कहता है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, बात यह है कि ये जो हमारा हमारे स्टॉक मार्केट्स जो हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वो सेंटिमेंट ड्रिवन है, और इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो इसके ऊपर जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में यूएस और ईरान के बीच में, उसके बारे में सेंटिमेंट जो सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट्स में हैं उनकी सोच उनके ऊपर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तेल के दाम है वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, वो वॉलिटिलिटी बहुत हो रही है आज के दौर में। एकदम से वो तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, दे हैव रीच्ड $91। तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, हमारी 85% ऑफ आवर फ्यूल रिक्वायरमेंट हम बाहर से ही मंगवाते हैं, तो इससे जो इन्वेस्टर्स की थोड़ा सा वो रुख बदल गया है ये पिछले 2-3 हफ्तों से। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये जो विस्टेजर कॉन्फ्लिक्ट है। और

0: तेल के अलावा भी बाकी सारी जो काफी सारी प्रोडक्ट जो वहां से आती है वेस्ट एशिया से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो का तो ब्लॉकेड है, बाकी रेड सी में से के बीच में से मर्चेंट शिपिंग के भी वहां पर तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि यमन में से वहां अटैक हो रहे हैं। तो एक तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा ये है कि सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स को छोड़ के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वो वहां के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और उनके जो रिटर्न्स हैं वहां पर ज्यादा बेहतर हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं, मतलब और भी मैं चीजें गिना सकती हूँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा। आगे
1: मुनाफा वसूली का कैसा रुख देखने को मिला है इन दिनों के दौरान, खासतौर पे अगर डीआईएस की हम बात करते हैं तो?
0: खासकर हाँ जी
1: डीआईएस की, घरेलू निवेशकों की बात करते हैं तो?
0: हाँ बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग की भी बात है, लेकिन हमारे जो घरेलू निवेशक हैं वो ज्यादातर इस वक्त वो अभी भी इनकी जो फेथ है हमारी मार्केट में वो जारी है, और इसी वजह से हालांकि फॉर एफआईआईज हमें छोड़ के जा रही है बड़े दबादब इस वक्त जा रही है, लेकिन बीच में अभी हाल ही में तो वापस भी आ रही थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ की जो असेसमेंट ये था कि वैल्यूएशन अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं
1: जी।
0: तो अब हम वापस आ सकते हैं, लेकिन अब फिर जो रुख बदल गया है और वो चले गए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त तो खैर प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है, लेकिन वैसे वो इतना ज्यादा वो बेरिश ट्रेंड्स नहीं है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के।
2: Sushma, IT was among the biggest laggards today. So is the weakness linked to valuations, US demand concerns, or the currency factors or profit booking?
0: I would say these are long-term issues as far as IT services are concerned. The perception that, you know, IT services are not going to be able to match the, match the kind of AI technology that has sprung up in the United States. So I think that it is linked to that. And the fact that, of course, that in America, things, the stock markets are rebounding just now at a time when ours are going down. We have to remember that for America, when for the US, when oil prices go up, while it might be uncomfortable for consumers, the fact is that they, as an exporting nation, producing an exporting nation, for them it comes as a benefit. So the situation is very different, and coming back to IT services, the perception has been for quite some time that there is going to be a problem with the IT services industry because of the introduction of AI, and I think that's not really so. You're going to have so many more applications of AI, and it's going to be these IT services companies which are going to be doing that kind of work on applications.
2: Okay, auto and pharma, Sushma, showed relative resilience today. Is this defensive positioning or evidence of sector-specific strength?
0: I would say it's sector-specific strength, because pharma is definitely one of our strongest exports, one of our strongest sectors, and auto, of course, as you must have read the reports, the demand has risen exponentially, and even in rural areas, that was the area that people were worried about, two-wheelers, there also the demand has gone up. So auto is an area that is certainly doing well. Even in exports, auto is doing well. So certainly, I think that is a strength for both these areas.
2: Okay. And also the Indian equities, as you very rightly pointed out, they came in under pressure today with the Sensex falling 493 points and the Nifty, extending its losing streak. Now, is this a temporary bout of risk aversion, or is the market signaling a more meaningful change in trend?
0: Well, that's very difficult to say right now, because we would have to see the market for a while. I know, of course, the market has been, going down in the last few weeks. There has been a bearish trend. But I think more of what is happening in the market is a reaction to external developments and the perceptions that, what is happening between US and Iran could have an adverse effect on our growth.
1: सुषमा थोड़ा सा अगर पीछे जाकर के हम आपसे बात करें तो जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 707 अरब अमेरिकी डॉलर तक के हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की जो बात है, विदेशी मुद्रा का एक इनफ्लो उसमें आया है, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है और स्टेबिलिटी होनी चाहिए रुपए में और देश की एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने की लगातार बात हम कर रहे हैं.
0: देखिए ये जो स्कीम बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे बहुत फायदा हुआ है. मतलब इनफ्लोस की बात आपने की, ये एनआरबी की वजह से हुई है, और लेकिन उससे इतना सपोर्ट रूपी को नहीं मिला जितना सोचा जा रहा था
1: जी.
0: और रूपी डिप्रिसिएशन खैर हम समझ सकते हैं कि वो कम, मतलब हॉल्ट हो गई है, बंद हो गई है डिप्रिसिएशन, लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ है रूपी. तो ये थोड़ी सी शायद आरबीआई माइट बी लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दैट, पर मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे एक तो हमारे रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं इस वक्त, और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बहुत ही छोटा है इस वक्त. मेरे ख्याल ये जो जून के क्वार्टर में, अप्रैल में, जून क्वार्टर में, जिसमें ये अभी ये वॉर हुआ था और जिसमें इतना डर लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा बहुत महंगा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल 0.6% ही हुआ है हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट इस
1: वक्त. सुषमा, इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, सरकार जो भी प्रयास कर रही है उन्हें आप मतलब किस तरह से देखती हैं, क्या ये इस तरह के कदम आगे भी उठाए जाने की संभावना रहती है जहां पर स्टेबिलिटी देने की बात हम करते हैं तो?
0: हाँ देखिए, आरबीआई ये वक्त वक्त पर ये कदम उठा देती है. अभी ये FCNRB का जो ये इतने सो स्कीम्स आए हैं वो इसी वजह से थे, टू नॉट जस्ट टू स्ट्रेंथन द रूपी, इनका ये था टू गिव मोर कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स, ये भी था कि इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए और ये हम ये कि हमारे यहाँ रुपीस मतलब डॉलर्स डालने से उनको आराम से उनको निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हो जाता है. इसमें साइड इफेक्ट ये है कि मतलब रूपी की डिप्रिसिएशन कम हो गई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतना वो अप्रिशिएट नहीं हुआ रूपी, लेकिन जो गिरने की जो तकलीफ हो रही थी वो तो कम हो गई है. हाँ, अगर आगे के दिनों में और कुछ मतलब उस कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो आरबीआई ये वक्त वक्त पे ये स्कीम्स निकालती रहती है.
1: जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है. छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण की सुविधा का विस्तार किया है और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कमजोर वर्गों को 3,49,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है. सुषमा, इस तरह की जो खबर है, अगर आर्थिक मोर्चे के नजरिए से देखें तो क्या समझ सकते हैं इससे हम?
0: देखिए, मुझे असल में ये खबर अच्छी तरह से सुनाई नहीं. जी, थोड़ा सा आप संक्षेप में बता देंगे क्या बोले आप?
1: जी, मैंने ये बोला कि वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरफ से जारी किए गए हैं.
0: अच्छा, हाँ. तो ये जो क्रेडिट फ्लोस जो है ये एकदम से बहुत बढ़ गए, और रीजनल रूरल बैंक से ये क्रेडिट फ्लोज बढ़े हुए हैं. ये बहुत ही पॉजिटिव मेरे ख्याल डेवलपमेंट है, और यही एक इनफैक्ट काफी कमेंटेटर्स ने इसके ऊपर बात की है कि जो जो इस वक्त काफी इस वक्त ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और शायद हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है. लेकिन अगर आप ये क्रेडिट फ्लोस की तरफ देखें तो ये दिखाया जा रहा है कि

0: एक्चुअली हमारा जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल नहीं, इसका जो क्रेडिट पिकअप जो है वो काफी बढ़ गया है,
1: जी
0: और आगे
1: बिल्कुल.
0: वाले दिनों में लगता है कि कंजम्पशन और बढ़ जाएगा।
2: मूविंग ऑन, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द सिक्स पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट PIL कंप्राइजिंग 405 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइटम्स विद एन एस्टिमेटेड बिजनेस पोटेंशियल ऑफ 3,070 crore rupees. These include 16 items of the Indian Coast Guard and 389 items of defense public sector undertakings. The list contains line replaceable units, subsystems, sub-assemblies, spares, components and raw materials. The ministry said that this sixth PIL marks another step in the government's efforts to promote self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. It is expected to further expand opportunities for the Indian industry, strengthen the domestic defense manufacturing ecosystem, promote investment and innovation, and contribute to reducing dependence on imports. The ministry informed that the detailed list of items is also available on the Srijan portal, srijandefense.gov.in. Sushma, this is a step towards self-reliance in defense manufacturing and also towards making in India, giving it a big boost.
0: Yes, in fact, defense is an area of great progress in recent years. Not only are we manufacturing within the country, we are exporting also. So India has become a fairly large arms exporter. And of course, there have also, since the private sector is now being involved more and more, not just in defense, but in space. So you have so many now private, public-private collaborations, as well as private collaborations with foreign companies, you know, which are now coming forward and setting up. So it's one of the big, I would say, success areas in the manufacturing sector.
1: आगे बढ़ते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी को अब पारंपरिक व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर साझा निवेश, सहयोगी नवाचार तथा सहभागी विकास और निर्माण की दिशा में आगे जाना चाहिए. वे आज मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने अमरीकी कंपनियों को अपने राज्य में आमंत्रित करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र को भारतीय और वैश्विक विकास के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करें. श्री फडणवीस ने राज्य की प्रतिभा, बुनियादी ढांचे, बाजारों, प्रौद्योगिकी और वैश्विक संपर्क बढ़ाने पर बल दिया. वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने के लक्ष्य का आपसी साझेदारी है, जो कि बहुत ही बेमिसाल क्षमताओं को दर्शाता है. सुषमा, आज ये जो बैठक हुई मुंबई में, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: देखिए, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है. हालांकि इस वक्त जो है, हम सब लोग ये इंडो यूएस ट्रेड डील जो है इसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री, ये भी उतना ही महत्व, मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करे. लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज हैं, यहाँ बेस्ड हैं, यहाँ उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए. और इस वक्त जो अमेरिकी कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा निवेश चाइना में किया है, तो उतना तो वहां से, अब वहां की जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो धीरे धीरे करके वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं चाहते हैं कि चीन में बेस्ड जो अमेरिकी कंपनीज यहाँ आनी चाहिए. लेकिन इसके लिए हमें अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा, मतलब थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए. तो मेरे ख्याल में ये वार्तालाप से काफी कुछ पैदा होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज फिर हमें बताएंगी कि क्या तकलीफें हैं वहां यहाँ आने के लिए. जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, वो बता देंगे, और उससे ये जो प्रोसेसेस हैं स्ट्रीमलाइन हो सकती है.
2: सो सुषमा, बोथ द एंबेसडर एंड द इंडियन डेलीगेट आल्सो सेड that taking India-US bilateral trade to $500 billion by 2030 reflects the unmatched potential of the partnership between the two countries. Now, does this reflect anything that will take place soon between the India-US trade deal? Is it moving towards that?
0: We really can't say, because the Indo-US trade deal

0: गोल्ड की गिरावट और बढ़त का जो एक सिलसिला है बहुत ही सीमित दायरे में हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, वही हाल चांदी का भी है। क्या लगता है इस मार्केट से आपको?
1: देखिए गोल्ड का जो की जो इस वक्त वो गोल्ड गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और इस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह है, पिछले दो सालों से गोल्ड की कीमत एकदम से बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल इस वक्त थोड़ा सा प्लेटो पे आ गई है। साथ में चांदी का भी दाम बढ़ गया, चांदी को हम सेफ हेवन एसेट पहले नहीं कहते थे, पर मेरे ख्याल में अब ये भी बन गया है, क्योंकि इसकी भी खरीदारी ये सेफ हेवन एसेट माना जा रहा है इस वक्त। तो क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मेरे ख्याल अब ये थोड़े प्लेटो हो रहे हैं, लेकिन बहुत नीचे नहीं आएंगे।
2: Sushma, what is the one key message that you will give to the investors? Should they remain cautious, use the correction to accumulate quality stocks, or wait for greater clarity on crude, geopolitics and global interest rates?
1: Well, I think number one, of course, they have to take a long-term view always. And the second is that, you have to look at quality of the company.
2: They have to be cautious.
0: जी सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Thank you,
2: Sushma, for being with us. And before we close the headlines once again, benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 500 points, Nifty settles below 24,200, regional rural banks register over 10% rise in gross loan outstanding last year, and global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया दो दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
5: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
4: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जन मुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5,00,000 रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने देश भर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: বন্যা কবলিত চণ্ডীপুর, ভগবানপুর ও পটাশপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে 16টি ত্রাণ শিবিরে 769 জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। অতিবৃষ্টির ফলে 30,000 হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত। অবিরাম বৃষ্টির জেরে পশ্চিম বর্ধমানের গাড়ুই ও নুনিয়া নদীর জল উপচে প্লাবিত উত্তর আসানসোলের রেলপাড় সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। বানপুরেও টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে একাধিক রাস্তা। টানা বৃষ্টির জেরে পশ্চিম বর্ধমানের দামোদর নদেও জলস্তর বাড়ছে। পুরুলিয়াতেও টানা বৃষ্টিতে পুরুলিয়া বরাকর রাজ্য সড়ক থেকে বাঁকুড়াগামী রাস্তা জলের তলায়। প্রবল বৃষ্টির জেরে বাঁকুড়ায় একাধিক নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বীরভূমের তারাপীঠে হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে 9 জনের মৃত্যুর পর হোটেলগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। দমকলের ছাড়পত্র ও প্রয়োজনীয় অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকার অভিযোগে 15টি হোটেল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। রামপুরহাটের মহকুমা শাসক আজ লজ ও হোটেলগুলির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে গঠিত অডিট কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন। সাংবাদিকদের তিনি জানান, হোটেল কর্মী ও ম্যানেজারদের নিয়ে একটি বিশেষ মহড়ার আয়োজন করা হবে। আগুন লাগলে তা নেভানোর প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে দমকল কর্মীরা তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এদিকে অগ্নিকাণ্ডে হোটেল মালিক প্রবীর পাল ও তার ছেলে কল্যাণ আশিসকে আজ রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে 7 দিনের পুলিশ হেফাজত হয়েছে। ঘটনার তদন্তে রামপুরহাটের এসডিপিওর নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল। ভারত 1947 সালের 15ই আগস্ট স্বাধীন হলেও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় 18ই আগস্ট। নদিয়ার করিমপুর, শিকারপুর, পলাশী সহ কৃষ্ণনগর, রানাঘাট মহকুমা, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে আজ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হয়। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ একাধিক বিষয়ে 100 দিনের সাফল্যের খতিয়ান দিয়ে রাজ্য
1: সরকার। নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इसका आयोजन 2026 में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया।
2: The impact of climate change.
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है

0: এও আমি যদি তাকে অসম্মানসূচক ব্যবহার করি, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি তিনি তখন লজ্জা পেয়ে অনুতপ্ত হন। আমি মনে করি কাউকে সম্মান করার সার্থকতা সেখানেই।
1: এবারে হয়তো আমরা যা সময় আছে, যদি ফোন আসে সেটাই শেষ ফোন হবে, কারণ ঘড়ির কাঁটা বলছে আমরা এখন ছুটি নেব এবং এরপরে ফিরে আসব 9:30 নয়, 10:10 আরোগ্য অনুষ্ঠানে বিশ্বজিৎ আর সুদীপ্ত। তবে তার আগে না, এই মুহূর্তে আমাদের যা সময় আছে, হ্যাঁ, আরও একটা
0: শান্তনু ঘোষ, তিনি লিখছেন বাউরিয়া বৌলখালী থেকে, সম্মান করলেই সম্মান পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে যেমন এমন মানুষ আছে সম্মান করতে জানে না, যার টাকা আছে সে সম্মান পায় এবং যার টাকা নেই সে অসম্মানিত হয়, একেবারেই সম্মান পায় না।
1: আমাদের আজকের আপনার কথা এখানেই আমরা শেষ করব, তার কারণ আমাদের এখন ঘড়ির কাঁটা বলছে যে আপনার কথায় আপনারা যারা এসেছিলেন, কেউ বলেছেন আমাদের সঙ্গে সহমত হয়েছেন, কেউ হয়তো সহমত হননি, আপনাদের মতামতটাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আবার ফিরে আসব আপনাদের কাছে ঠিক 10:10 আরোগ্য নিয়ে। আর আরোগ্যে আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা হবে, চোখের ছানি এবং গ্লোকোমা, এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সঙ্গে থাকবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আরসি পাল, রতীশ চন্দ্র পাল, তিনি থাকবেন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। আলোচনায় আপনারাও অংশগ্রহণ করতে পারেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে এবং ফেসবুক লাইভে।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जाँच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
4: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
2: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे।

0: आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए दो दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रूपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई है वहाँ और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावे बहुत लोग को इंजरीज भी आई है और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र

में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त

0: देश रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीना का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change.
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मतदाता आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल से डिजिटल पहचान पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि करीब 12 लाख मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां प्रमुख देश है। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमस्यामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरुमेनायम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय वीसी प्रमोद।